में आप बीस लाख से डेढ़ से मिट्टी बनाना लेकिन वहाँ कोशा बीमा दाबी एकाइस लगभग भुगतान सत्सठी लाख वहाँ कोशा भोटे को शिवाली ने भौतिक संरचना सुमारी साधन और अन्य संपत्ति में पुराने को क्षति को वनस्पति का आर्थिक आकार बीमा दाबी मार्फत देखना चाहे कोशा अथवा भादो वनस्पति भोटी को क्षति के शुरू

0: आगे तो शादी और डिस्काउंट करे थे
1: मेरा खाती है लेकिन मुंबई नगरी तिम्रो प्रश्न तिम्रो भावना अनि तिम्रो अनुभव अब मनमै राख
2: माया मित्रता शरीर सम्बन्ध सुरक्षा राख्नु निर्णयका कुरा बुझौ सोधौ अनि खुलेर कुरा गरौँ

जय हो बाबा। संध्या 5 बजे मौसम बुलेटिन में स्वागत बाई मध्यम आज फेरी मौसम प्रसन्न खान लगेगा। बिहान को हल्का कोइला लगे मौसम प्रसन्न खान लगे मौसम पूर्वानुमान नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार बढ़ते चाहिए तराई का ढेर ठाव में पैदा 3 दिनसम मौसम हेदशी सफारना पूर्वानुमान देखी बा मौसम में खाना गर्छन् किसानहरूले चाहिँ अब धानको काममा व्यस्त रहेर बस्ने गर्नु पारेका छ कसरी त खायो फेरि

आएंगे तो चाहे सरकार को हो हमारे कृषि क्षेत्र को हमें तनाव का टैक्स नहीं हम बढ़ रहे मैंने कुछ भी यहाँ घूमे वहां घूमे कुछ भी कहें और मैं उनके 12 से 1 फीट पर

कहीं पर नहीं थी, चोको माया जी रहा धनी मई कहीं अपना ही महीना ऐसी स्थिति में देने आये हो आकर की यही राज में तो ये जिन जिन को धनी है तो ऐसा जिन जिन का मान चाहिए हो वो सबके पर तो कई भी मरी भी थी कोई कहीं कोई कहीं जिन्हें रखे तो मैं हंसना हो कहीं ना तो मैंने हाथा की ठोका दिए संपूर्ण ठोका दिए हाथ रखे पानी खाया पानी पीया

0: विनोद कुमार एफएम द्वारा सभी प्रचारित संदेश
1: मैं साथी हूँ जिसका अनुभव है।
2: मैं साथी हूँ जिसका अनुभव है।

0: 在这种行业里面打不开，你知道？就是一些别的时间，就是挺轻的时候，那就是好了，那就是好了，那么干来吧，我就去好了，就来了，就是可以找我们那里的人协助。今天不是什么原来的工资，给我们现在就是涨的多，我虽然也不知道给涨的是哪里，但是就是有点难保证和你们玩的，俺们现在就是花了这么大的精力才有。
1: जिन जी हम लोग सेल संबंधित करीब 50 से 70 मुद्दे वहाँ है अदालत ये फैसला कर सके तो बताइए कुछ हम लोग कुछ परराष्ट्र मंत्री सीसी खरा ने भोटी को सी त्रिशूली बालीघाट सृजित चुनौती बीच समय पर आश्वासन को एक आशय होना चाहता नेताओं के हित और प्राथमिकता प्रबंधन करने दृष्टि से सावधानी रखने को बताया सं आज सुबह स्वतीय का मंत्री खरा ने महासभा का क्रम विभिन्न राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख से मंत्रालय का भेंट बताई नेताओं को जलवायु न्याय को मुद्दा प्रभावकारी रूप में उठाने पर सरकार का सतत उपाय को बताई प्रधानमंत्री बालन साहब महासभा संबोधन में सुबह स्वतीय पति उन्हें विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक में सक्रिय रहकर थे नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरू थप असुरक्षित बन्दै गएकाले आफूहरूले जलवायु संकटको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार

कोई यहाँ ऐसा था कि जब रास्ता यहाँ सिटी तो में रास्ता नहीं है या फिर उनको बंद हो जाती है तो फिर बंद कर रेडियो गुना माध्यम प्रभावी सुना साथ में कहा।

0: अभी तो जिंदगी ज्यादा देखिए तो आपका ध्यान देने में इसका जो टाइम मिल जाएगा सब अपने आपका ध्यान देने में मिल जाएगा सब छात्र में इसकी अगर कितने बिहार में था तो नेक्स्ट टाइम देते दस बार बड़ी क्षमा पड़ सका तो हम नहीं आऊँ सर
1: भाई ये भाई ये सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब सब

0: ओडिशा पहाड़ी भारी बारिश क्षेत्र में बसोवास करने मानिसहरूले मौसम संबंधी आधिकारिक सूचना में ध्यान पुर्याउनु पर्छ।
1: आफ्नो घर कार्यालय वा विद्यालय नजिक परिवार हुन सक्छ।

0: मोदी जब सरकारी मस्जिद पाकर प्राण उतार रहा है वोट किसको से उत्तर सकता है
1: आप लोग किसी खेती का रात को सम्मान देना चाहती आप वोट आपको पास बढ़िया भर पशुपतिनाथ सब राजमा इंडियन इटालियन छात्रा ड्राइवर साइज इंडियन मिनिटर कंबाइन मिल राइस मिल चारा मशीन हार्वेस्टर साफ वाटर मैट पशुपन सीवन का अपना ट्रेड मशीन कोयला का सांसद खेती किसान करना सब मेरे सम्मान प्राप्त होगा उसे नेता विद्रम सब मेरे कृषि का मशीन खेत किसे छूटना अपना जाए खबर करने से खत्म बताकर फिर बना देता

नहीं खाई। हमारे लिए हम आपके पास तो देने तो सर जूस पर सर डेढ़ साल लगा करते हो।